डिप्लेशन हो गया। साल्ट का काम है पानी को चूसना। बरसातों के दिनों में ना अगर आप किचन क्या जो आपका नमक वाला है ना पॉट, उसको अब थोड़ी देर के लिए खाली छोड़ दें, हालांकि आइए अंदर है, बरसात बार हो रही है, आप देखेंगे वो गीला हो जाएगा। इसको मॉइस्चर सक करने की कुदरती गिफ्ट है, कुदरती इसकी जो है ना कैफियत है, और वो चूस लेता है, गीला हो जाता है। इसी तरह ही अगर कहीं पानी रुक गया है, अगर लगता है कि एक्सेसिव डिपोजिशन हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि हाँ भाई इसमें साल्ट रुक गया है, जिसको बाहर निकल जाना चाहिए था वो नहीं निकल पा रहा। या कोलेस्ट्रॉल की बात मैंने आपको भाई वो पीले पीले से स्पॉट्स हो जाते, या किसी की टांगे अब आया चारपाई पे बैठा, फतेह तो ही हुई सब कुछ हुआ, और उसने अपना जूते वगैरह निकाला चारपाई के ऊपर बैठा तो देखो उसके तो पांव ही सूजे हुए, उसकी टांग ही सूजी हुई है। तो आप जब इस तरह की निशानियां देखते हो ना, तो ये सब आप सब लोगों को बताएंगी कि इसके अंदर कुछ ऐसा घटित हो रहा है। अगर इसकी टेक केयर ना की गई तो आने वाले समय में इसका कोई रूप भयानक हो सकता है। ठीक है, अगर खून सप्लाई नहीं जा रही है तो अल्टीमेट क्या होगा, आपने देखो कि ज्यादातर बुजुर्गों को, बड़े यंग बच्चों में तो कम होता है, लेकिन ज्यादातर बुजुर्गों में क्या होता है, उंगलियों के जो पोते हैं या टिप्स जिसको बोलते हैं फिंगर टिप्स, या हमारे जो पांव के उंगलियां हैं उनके फिस्ट बोलते हैं उनको, वो फिस्ट के आगे आगे सब कुछ ड्राई हो जाता है। जैसे कहीं खेत में हम पानी दे रहे हैं ना, तो पानी दे रहे हैं जहां तक पानी गया ठीक है, और कुछ ऊंचा टिब्बा रह गया, ऊंचा सी चीज रहेगी वहां पर पानी नहीं गया तो क्या होगा, वहां की फसल ठीक नहीं होगी, वो सूख जाएगी। इसी तरह ही जहां दूर के हिस्से में जिनको हम बोलते हैं डिस्टल पार्ट्स, ये जो हमारे टिप्स है ना, ये हार्ट से सबसे दूर है, पांव हमारे हार्ट से सबसे दूर है, और इनमें जो सप्लाई मिलेगी, जैसे नहर की टेल होती है ना, वहां पर पानी बहुत कम पहुंचता है, उससे पहले जितने भी दाने लगे हुए हैं वो पानी खींच लेते हैं, पीछे पानी बहुत कम जाता है, और वहां पर वो बोलते हैं टेलें तो सूख गई हैं। इसी तरह ही वो हमारे टिप्स फिंगर्स के जो सूखने शुरू हो जाते हैं, तो क्या बताते हैं, ये बताते हैं कि भाई दिल खून तो पहुंचा रहा है, या तो खुराक की कमी हो गई है, और या जो पहुंचाने वाली मशीनरी है ट्रैफिक है वो उसमें कमी आ गई है, और इन चीजों से हम उसकी खोज करने शुरू कर देते हैं कि किसमें क्या हो रहा है। तो वही बातें मैं आपको बता रहा हूं कि अगर चेस्ट की बात, क्योंकि चेस्ट में मेन इंपॉर्टेंट जो ऑर्गन है हमारे वो फेफड़े हुए, हार्ट हुआ, और ये जो मीडिया श्रेणी के अंदर रहने वाले अंग है इसोफेगस हुआ, या ब्रोंकस ट्यूब हमारी हो गई, इस तरह की जो चीजें, इनके जो साइन एंड सिम्टम पैदा होंगे वो यही होंगे कि भाई टाइटनेस हो रहा है, पेन है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होनी शुरू हो जाएगी, सडन स्वेलिंग होनी शुरू हो जाएगी, अनएक्सपेक्टेड टाइप के फटीग, यार ठीक ठाक था यार अभी काम करने को मन नहीं कर रहा, बड़ी सुस्ती हो गई है, हाँ जी क्यों हो गई है, खुराक तो आपने खाई थी, खाना तो आपने खाया था, जो आप पहले करते थे रूटीन में वही आप कर रहे थे, बावजूद इसके भी आपको खुराक, आपको फटीग क्यों होगी, आज क्यों थकावट होगी, पहले तो नहीं थी, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि या तो वो खुराक, क्योंकि खुराक वही है जो पहले आप खाते थे, खुराक वही है जो दूसरों ने खाई है, वही आपने खाई है, लेकिन आपको फटीग होगी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन थी वो नॉर्मल नहीं हुई, बॉडी में खुराक के जितने भी तत्व थे उनकी डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल नहीं हुई। और अगर हमें ये लगे कि किसी खास तत्व की जो कमी पेशी हमारे दिखाई देती है ना, जैसे आयरन की कमी पेशी होती है तो हम आंखों के नीचे लेंस देखते हैं तो वो जो है वो एनीमिक हमें दिखाई देते हैं, रेड नहीं दिखाई देते, जीभ देखते हैं वो रेड दिखाई नहीं देती है, इस तरह आयरन की जो और निशानियां हैं वो हम देखते हैं तो हम बोलते हैं नहीं है इसमें वो उसकी कमी हैगी है, और कई साल्ट की कमी पेशी होती है तो क्रैक से आने शुरू हो जाते हैं हमारे फिंगर में, टिप्स में, या बेड नेल जिसको हम बोलते हैं इसमें ऐसा होना शुरू होता है, सिलते सी उभरनी शुरू हो जाती है, ये क्यों हो जाती है, मतलब हमारे शरीर में इसको जोड़ने वाला जो काम था साल्ट का, वाइटामिन सी का, वो नहीं हो रहा, अब खुराक तो वही है जिससे पहले पूरा होता था, अब क्यों नहीं हो रहा, इसका मतलब ये है कि हमें खोज करते करते ये पता चलेगा कि हमारी खुराक से या तो आयरन, या तो सोडियम, नमक वगैरह, या विटामिन सी,

0: ये असिमिलेट नहीं हो रहे हैं, बॉडी में मतलब खून में खुराक से नहीं जा रहे हैं, और इसीलिए इनकी सप्लाई आगे नहीं हो रही है। और फिर हम खोज उसकी करेंगे ना, उसका हल करेंगे। फिर हार्ट का तो नहीं ना करेंगे, हार्ट तो अपना काम कर रहा है, उसको तो जो आपने देना था दे दिया और वो आगे पहुंचा रहा है, लेकिन आपका जो आप दे रहे हैं हार्ट को उसमें ही कमी पेशी आ गई। तो इसी तरह हम खोज पड़ताल करते करते इस चीज पर पहुंचेंगे कि ट्रैफिक में चलते चलते रुकावट कहाँ है। खुराक हमने दे दी, आंतरियों में गई, आंतरियों से आंतरियों ने स्क्वीज करके जो मटेरियल चाहिए था बॉडी को वो खून में मिला दिया, उसका तरीका है वो आगे बताएंगे हम, और वो दे दिया। लेकिन या तो इस असिमिलेशन प्रोसेस एक खुराक से निचोड़ कर जो तत्व इसको खून में मिक्स करने थे वो नहीं किए, या ऐसा हो सकता है कि आप जो खुराक खा रहे हो उसमें वो जरूरी तत्व है ही नहीं, कमी पेशी है। तो इसलिए डॉक्टर सप्लीमेंट देते ना, ये तुम आयरन के कैप्सूल ले लो जी, तुम विटामिन सी की गोली रोजाना लिया करो जी, ये तुम कैल्शियम की गोली, क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं, दे अज्यूम, वो सोचते हैं कि भाई इनको जो खुराक दी जा रही है उस खुराक में इन चीजों की कमी है। और अगर वो जाने कि भाई नहीं, खुराक तो इसकी बैलेंस है, जो खुराक है वो तो वही है जो दूसरे घर के मेंबर खाते हैं और उनको तो ऐसी कमी नहीं है। बड़ी आसान सी बात है ना एनालिसिस करना, कि एक घर के एक ही मेंबर को वही दाल वही खा रहा है, वही सब्जी वही खा रहा है, वही रोटी वही खा रहा है, दूसरों को क्यों नहीं आयरन की कमी हुई, दूसरों को क्यों विटामिन सी की कमी नहीं हुई, दूसरों के शरीर में कैल्शियम क्यों पूरा नहीं हुआ या हुआ है, तो इस एक शरीर में ये कमी पेशी क्यों हो गई है? इसका मतलब क्या हुआ कि ये उसमें असिमिलेट नहीं हो रहा है। तो फिर हमने टारगेट कर लिया ना, हमने टारगेट कर लिया कि आंतरियों से इस तरह की चीज जिसकी निशानियां, क्योंकि हमारे पास निशानियां हैं कि कैल्शियम कम होगा तो क्या होगा, आयरन कम होगा तो क्या होगा, बॉडी में विटामिन सी जिसको स्कर्वी वगैरह बोलते हैं, ये विटामिन सी कम होगा तो क्या होगा, सोडियम अगर कम होगा तो क्या होगा, या सोडियम ज्यादा होगा तो क्या होगा, ये सब हम जानते हैं। और उसी की भाषा से हमें बाहर निशानियां उसकी दिखाई देंगी जिससे हम ये अंदाजा लाएंगे कि भाई इसके शरीर में कैल्शियम की कमी है, इसके शरीर में सोडियम की कमी है। तो भाई फिर हम खुराक की शनाख्त तो कर सकते हैं, भाई तुमको ये खाना है, वो बोलता है ये तो मैं खा ही रहा हूँ, खुराक तो मेरी ऐसी नॉर्मल है, और घर के मेंबर को किसी को ऐसी प्रॉब्लम नहीं, तो फिर क्या हुआ? फिर मतलब स्पष्ट हो गया आपकी आंतरियों में जो असिमी जो निचोड़ कर जो खुराक का निचोड़ निकल कर खून में शामिल होता, वो मेसेंट्री का प्रोसेस है, वो हम बताएंगे आपको, ऐसा है तो फिर नुक्स तो वहां पर हुआ ना, ब्लड में तो ना हुआ ना, हार्ट में तो ना हुआ, हार्ट का तो काम वो तो चल रहा है, जो आपने मुझे दिया वो मैं सप्लाई आगे कर रहा हूं। इसी तरह की सांस की बात आएगी, इसी तरह की किडनी की बात आएगी, इसी तरह ही जितने और अंग हैं जिनका अलग अलग फंक्शन है, अगर किसी फंक्शन में कोई कमी पेशी आ रही जिसको हम बीमारी बोलते हैं, किसी भी अंग में कोई कमी पेशी होती है उसके काम करने के ढंग में या काम का जो रिजल्ट सामने आ रहा है, रिजल्ट क्या है, हार्ट नॉर्मल कम कर रहा है तो 72 to 80 पर मिनट पल्पिटेशन हो रही है, और अगर कम कर रहा है नहीं सही कर रहा और आगे उसकी कमियां पीछे भी पैदा हो रही है तो फिर वो बीमार है। और अगर हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ा, नहीं ये तो 100 times पर मिनट चल रहा है, तो मतलब समथिंग इज रॉन्ग इसी एरिया में। इसी तरह ही हमने ऑक्सीजन की बात आपको बताई थी कि ऑक्सीजन लेनी तो काम है ना फेफड़ों का, इसको खून में मिलाना काम है फेफड़ों का, फिर ये खून वापस हार्ट को जाएगा और फिर हार्ट का काम इसको सप्लाई करना। बावजूद इसके भी वो डॉक्टर लोग देखा ना, वो उंगली में लगाकर देखते कहते ये ऑक्सीजन पूरी है कि नहीं, तो मतलब क्या हुआ कि जो खून की सप्लाई हार्ट से हो रही है शरीर को उसमें ऑक्सीजन की कमी आ रही है, क्योंकि हार्ट का तो नुक्स नहीं ना, हार्ट को तो जो मिला उसमें कंटेनर ने भर लिया, कंटेनर जिसको हम बोलते हैं आरबीसी, रेड लाल खून के कण, ये हमारे खाली डब्बे होते हैं, वेगन होते हैं, और इसमें हम ऑक्सीजन भर के ले जाते हैं और दिल ऑक्सीजन इनमें भर के ले जाता है। अब जो पीछे से ये ऑक्सीजन नहीं आई है तो बेचारा क्या करेगा, तो खाली डब्बे जाएंगे, सांस फूलेगा, और उसको बार बार हार्ट तो यही कर सकता है ना कि मैं 72 से 80 बार एक मिनट में चलता हूँ, नहीं भाई मैं 100 बार चलता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि जितना थोड़ा थोड़ा आ रहा है ना ऑक्सीजन मैं उतना फटाफट पहुंचाता रहूं। और ऑक्सीजन देना या लेना किसका काम है, आपका लोगों का। तो हम वहां पहुंच जाएंगे ना कि भाई फेफड़ों में इस तरह की कोई कमी आ गई है कि वो ऑक्सीजन तो बाहर से क्योंकि एनवायरमेंट से ले रहा है, उसके सांस लेने और फेफड़ों तक ऑक्सीजन पहुंचने में कोई रुकावट है, तो फिर हम उस एरिया की फाइंड आउट करेंगे। तो वही बात मैं आप सब लोगों को बता रहा हूं, जो जनरल साइंस से उसमें इरेगुलरिटी ऑफ हार्ट बीट हो जाएगी, पेल्पिटेशन हो जाएगा, ब्रीदिंग का हम जानते हैं कि भाई 14 से 16 बार पर मिनट एक में सांस को चलना चाहिए जिससे हमारी ऑक्सीजन पूरी होती है नॉर्मल आदमी में। अगर 14 से 16 नहीं को 20 बार 24 बार 40 बार जैसे बच्चा पैदा होता है तो 40 बार सांस लेता है, क्यों? क्योंकि उसको उतनी जरूरत है। इसके हिसाब से यंग आदमी अगर 14 से 16 बार नहीं कम सांस ले रहा है या ज्यादा ले रहा है, बार बार इंस्पिरेशन ऐसे कर रहा है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो ऑक्सीजन बाहर से आ रही है वो ग्रेस्प नहीं कर रहा, वो ग्रेस्प करके आगे उसको ट्रांसपोर्ट नहीं कर रहा है। तो मतलब क्या हुआ, फेफड़ों में कोई नुक्स होगा या रस्ते का जो एरिया है ब्रोंकाइटिस का उसमें कोई नुक्स होगा, तो हम लोकलाइज कर देंगे ना, तो उसकी निशानियां क्या आएंगी। आजकल तो टेक्निक्स आ गई ना ऑक्सीजन चेक करने की, या फेफड़ों को हम देखते हैं कि किसी को निमोनिया हो गया, किसी को ब्रोंकाइटिस होगी, किसी को प्लूरसी होगी, और उसकी वजह से उनको ऑक्सीजन हमेशा पूरी हो ही नहीं सकती। तो ये सब निशानियां, जैसे फिजिकल की बात हमने की है, तो स्वेलिंग वगैरह, एडिमा वगैरह, ये सब इस बात की चीज है कि भाई जो वापसी वाली ट्रैफिक है, जो अंगों में खुराक गई है, खून गया है, उसकी वापसी होनी है, वो नॉर्मल नहीं हो रही है, और नहीं हो रही है तो इसका मतलब है स्वेलिंग हो रही है। और ये जो स्वेलिंग होगी तो कहां से शुरू होगी भाई, बैकवर्ड पांव की तरफ, हाथ की तरफ, जितने भी डिस्टल पार्ट हैं बॉडी के उनमें स्वेलिंग होगी, फिर वो आगे आगे बढ़ती आएगी, आगे आगे बढ़ती आएगी, और अल्टीमेट ऐसा भी हो सकता है कि भाई वो चेहरे में भी आ जाए, और चेहरे से पहले आपके हार्ट में आ जाए, और जब हार्ट में आनी शुरू हो जाएगी तो उसके ऑटोमेटिकली जैसे फेफड़ों में आ गई तो सफोकेशन के साइन आ जाएंगे, इसी तरह ही जो है पेरिकार्डियम के साइन आने शुरू हो जाते हैं, और बहुत से इनको हम तरतीब में आपको बताएंगे एक एक करके। सिर्फ यही सोचने की जरूरत है कि अगर वापसी ट्रैफिक में कोई रुकावट है, अगर तो जाने वाली ट्रैफिक में रुकावट है तो उसकी निशानियां मैंने आपको बता दी कि आयरन कम है तो क्या निशानियां आएंगी, सोडियम कम है तो फिर क्या आएगा, और कैल्शियम कम है तो फिर हमारे शरीर में कैसे कैसे आएगा। और जो वापसी चीज आने वाली है, ये जो वापसी जाने वाली अगर नॉर्मल नहीं है तो फिर जो स्वेलिंग होगी वो डिस्टल पार्ट हम उसको बोलते हैं जो हार्ट से दूर है, उनमें इस तरह की कंडीशन जो है आनी शुरू हो जाएगी। फिर नाखून की बात मैंने आपको कही थी कि भाई आमतौर नाखून फ्लैट होते हैं, आप देखिए अपने अपने अनाव फ्लैट होते हैं, पर कुछ लोगों के नाखून ऐसे होते हैं जैसे एक बॉल होता ना, कौली होती जिसको हम बोलते हैं, हम किचन में रखी उसको अगर उल्टा बैठा जाए, उसका मुंह नीचे कर दें तो ऊपर को उभरा हुआ होगा ना, तो अगर किसी के नेल इसी तरह उभरे होते हैं तो उसका हम बोलते हैं क्लबिंग नेल्स। और ये जो क्लबिंग नेल हैं ये इस तरह के सूचक है, इंडिकेटिव है कि या तो फेफड़ों में या तो हार्ट में, मीन्स चेस्ट के एरिए में कोई ना कोई इस आदमी को नुक्स है, मे बी बाई बर्थ, मे बी आफ्टर दैट, और कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है, और फिर हम डेट्स वेट पूछते हैं भाई ये आपको कब हुआ या कैसे हुआ। और अगर वो बोलता है कि भाई मैं जो बचपन था मुझे निमोनिया हुआ था, हाँ जी अब डॉक्टरों ने तो एंटीबायोटिक दे दिया होगा, अब डॉक्टरों ने अपनी ओर से उसको जमा कर दिया, लेकिन क्या हुआ, जो अंदर आपके जमा कर दिया जो एल्वोलाइज थी जिसमें ऑक्सीजन जानी थी वो जगह कम हो गई है, ल्यूमन अंदर का कम हो गया है, और अगर अगर मान लिया जाए वो पहले एक लीटर ऑक्सीजन ले लेती थी, अब वो एक लीटर नहीं ले पाती, उससे सांस भी तेज होगा, उससे सांस जो दौड़ सकता था वो उतना दौड़ नहीं पाएगा, सांस ज्यादा फूलेगा दूसरे लोगों से। अगर जिम भी जा रहा होगा, मैं तो जिम जाता हूँ, अब जिम भी जाएगा तो दूसरे लोगों से ज्यादा उसका सांस फूलेगा। ये सब चीजें इंडिकेट करेंगी कि आपकी जो एल्वलाई थी वो बचपन से लेकर या अब कुछ हो गया, तो या तो अब कुछ हो गया है उसकी वजह से ऐसा हो गया, क्योंकि आगे हम आपको बताने वाले हैं कि जो हार्ट में इस तरह के जो नुक्स होते हैं उनको हम अलग अलग डिवीजन करके जानते हैं आसानी से, कि अगर लेफ्ट साइड हार्ट में कोई प्रॉब्लम आती है तो, या राइट साइड हार्ट में प्रॉब्लम आती है तो, क्योंकि लेफ्ट साइड का काम और है राइट साइड का काम और है। इसी तरह कुछ ऐसी बीमारियां जिनको कंजेंटल हार्ट डिजीज बोलते हैं, जिनको बचपन से ऐसी कुछ चीजें हुई है, और वो भी हम डिटेल में आप सालों को बताएंगे कि क्या कैसा हो सकता है, फिर उसकी निशानियां क्या हो सकती हैं। और ये जो मोटिव या कंजस्ट, कई बोलते CHF, बड़ा सुना होगा नाम अपने लोगों को, जो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर जिसको हम बोलते हैं, वो क्यों ऐसा होता है, उसकी और सब क्या क्या निशानियां हो सकती हैं। ये बात मैंने शुरू में कह दी थी कि कुछ भी अचनचेत नहीं होता, उसकी निशानियां उससे पहले हमें दिखाई देती हैं। अगर हम इतने जानकार हो जाएंगे, जैसे जो जो जो बातें मैंने अभी आपको बताई हैं, नाखून आपने देखकर ड्राई हो रहे हैं, या नाखून में क्रैक्स आ रहे हैं, या नाखून क्लबिंग नेल्स हैं, या चेहरे में पीलापन है, या ये जो जो है स्पॉट्स बने हुए पीले पीले रंग के, इस तरह की जितनी भी चीजें हैं ये हमें बता रही हैं कि अंदर का सारा कुछ ठीक ठाक नहीं है। और वो हम ठीक ठाक कर लें, जान पाए उसको, तो जब ठीक कर लिया तो फिर हार्ट अटैक कोई नहीं कहेगा कि मुझे सडन हो गया। नहीं प्रबंध कर पाए अलग बात है, नहीं उस तरह का उपचार मिल पाया वो अलग बात है, लेकिन अगर आप जान गए हैं और उसका उपचार कर पा रहे हैं तो फिर कोई ऐसा नहीं कहेगा कि कहो इसको तो सडन स्ट्रोक हो गया, इसको तो सडन हार्ट अटैक हो गया, ऐसा कुछ नहीं होगा। इसलिए ये जो आम तौर पे छाती में जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जिनको वो लोग सडन बोलते हैं, सडन तो नहीं होता, लेकिन हाँ किसी वक्त कोल्ड स्वेटिंग, कोल्ड परस्पिरेशन, पंजाबी में उसको बोलते हैं त्रेलियां आना, ठंडे पसीने आना, इस तरह की कंडीशन जो है हो सकती है, ये भी इस बात की इंडिकेशन है कि भाई इसको ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी नहीं हो रही, जिसकी वजह से ये इस तरह का स्वेटिंग वगैरह का कंडीशन पैदा हो रही है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ की मैंने आपको बोल ही दी है, और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ केवल फेफड़ों की वजह से नहीं ना होती, हार्ट की वजह से भी होती है, क्योंकि फेफड़ों का काम है ऑक्सीजन लेना और आगे सप्लाई करना, और उसका हार्ट का काम है, अगर कम सप्लाई की है उसने तो फिर हार्ट का काम है, अच्छा भाई तुम जल्दी जल्दी मुझे सप्लाई करते रहो, मैं जल्दी जल्दी आगे देता रहूंगा, तो पैल्पिटेशन साथ में होगा, दिल का ज्यादा धड़कना, नॉर्मल से ज्यादा धड़कना, ये साथ साथ होगा। तो इस तरह की जो निशानियां हैं ये सब हम आप जान सकते हैं। और कुछ हालातों में ऐसा हार्ट चल रहा है, रेगुलर चल रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपने देखा कि हार्ट बीट या पल्स तो सभी देख रहे हैं, बीमार हो ना कोई तो ऐसे हाथ पकड़ लेते हैं, सभी लोग पकड़ लेते हैं, तो आमतौर पे आपका जो अंगूठे वाला हिस्सा है ना, अंगूठे के जहां बेस है अंगूठे का, वहां पर अगर आप दाहिने हाथ का बाएं हाथ के अंगूठे के नीचे रिस्ट में अगर हाथ रखेंगे, आपकी ये तीन उंगलियां आपको बता देंगी कि नीचे जो पेल्पिटेशन का जो पल्स चल रही है वो, क्योंकि वो आर्टरी है, वो जो चल रही है वो किस स्पीड से चल रही है, क्या रेगुलर चल रही है कि इररेगुलर चल रही है। अगर इररेगुलर चल रही है, तेज चल रही है, तो ये हमें साबित करेगी कि हार्ट नुक्स हार्ट में नहीं है, वो तो चल रहा है, नुक्स फेफड़ों में, उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। और इसी तरह ही अलग अलग वाल्व्स की जो अलग अलग कंडीशन है उसके बारे में मैं आप सब लोगों को बताऊंगा कि कहां से कहां वाल्व खून भेजता है, अगर उसमें कोई नुक्स हुआ तो निशानियां क्या होगी, और कहां से कहां कोई वाल्व खून भेजता है दिल में, और अगर उसमें कोई नुक्स हो गया तो निशानियां क्या होंगी, ये आने वाले चैप्टर में ऐसा हम आप सब लोगों को बताएंगे। तो आमतौर पर ये जो सिम्टम है हार्ट, क्योंकि हार्ट का पर्पज क्या है, मेन पर्पज हार्ट का ये है कि जो खून आ गया वापसी वाला उसको फेफड़ों में पहुंचाना। पहली बात, जो खून सारे शरीर से वापस आ गया है उसको फेफड़ों में पहुंचाना, जिसको हम बोलते हैं पल्मोनरी सिस्टम, पल्मोनरी आर्टरी, और वो पल्मोनरी आर्टरी वहां से लेकर जा रही है खून फेफड़ों में। और मान लिया जाए फेफड़े को निमोनिया हुआ है, फेफड़ों में तो सूजन हो गई है, फेफड़ों में तो ब्रोंकाइटिस है, या किसी भी तरह वो जो एल्वोलाई जो इस खून को ग्रहण करेंगी और इससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलने का मौका देंगी और इसमें बाहर से आए सांस से ऑक्सीजन को अंदर जाने देंगी, वो कम होगी, उसमें सूजन आ गई, तो उसकी वजह से क्या होगा, पीछे बैकलॉग लग जाएगा ना, यानी भी इतनी तो ऑक्सीजन जा नहीं रही, बैकलॉग लग जाएगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पल्मोनरी हाइपरटेंशन। कि वो जो पल्मोनरी, वो जो नाड़ी है जिहड़ी राइट वेंट्रिकल से लेकर खून फेफड़ों में जा रही है, उसमें बैकलॉग लग गया है, उसकी अलग निशानियां हैं, ठीक है। और ये सब चीजें हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे ताकि आसानी से आप जान पाए स्वेलिंग है, डिस्निया है, वीकनेस है, कि फटीग हो गया, डिस्कम्फर्ट हो गया, हैवीनेस ऑफ बॉडी, लगता है कि शरीर बहुत भारी हो गया है, नेल की बात मैंने अभी आप सब लोगों को बता दी है, और नेल ब्लू हो गए हैं, ऑक्सीजन की कमी है, इस तरह की जितनी भी चीजें हैं, ये पूरे के पूरे हार्ट और लंग्स के साथ कंसर्न्ड हैं। लेकिन आगे आने वाले चैप्टर में मैं आपको अलग अलग करके बताने वाला हूं कि ये तो सभी निशानियां थी ना, कंप्यूटेशन में फ्लटरिंग है, वीकनेस है, डिजीनेस है, नाजिया, ये क्यों होता है, कैसे होता है, ये सब मैं बता चुका हूं आप सबको इन पहले प्रोग्रामों में, पर ये सब हो रहा है तो मतलब इसका स्पष्ट है कि छाती में ही कोई नुक्स है। अब इसको हमने आइडेंटिफाई करना है। अब जब आइडेंटिफाई करने की बात आएगी तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे हार्ट से। तो हार्ट है, उसके बारे में हम जानते हैं, मैं फिर दोबारा उसको जब अगला चैप्टर हम शुरू करेंगे ना, तो उसमें हम सबसे पहले आपको ये बताएंगे कि हार्ट की सरफेस एनाटॉमी क्या है, कहां पर है हार्ट, और हार्ट का अंदर का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, कहां पर क्या क्या चीज, बाहर से देखेंगे तो कहां पर क्या चीज हमें दिखाई देगी, हमारा कितने सारे वाल्व है, ट्राइकस्पिड वाल्व है, माइट्रल वाल्व है, दूसरा फोरामेन ओवल है, उसमें सेमीलूनर वाल्व, पल्मोनरी वाल्व है, सेमीलूनर एओर्टिक वाल्व है, ये सब चीजें जितनी भी हैं कहां कहां पर है, बाहर से आप कैसे जानेंगे कि कहां पर है, और मान लिया जाए इनमें से कोई नुक्स हो गया तो फिर आपको कैसे पता चलेगा, ये सब चीजें मैं आपको बताऊंगा। जैसे मैंने पल्मोनरी की भी बात की ना, तो ये भी एक अलग चैप्टर है कि पल्मोनरी हाइपरटेंशन होगा तो साइन सिम्टम्स क्या होंगे, आपको बाहर कैसे पता चलेगा, हाँ जी। तो ये सब चीजें अगले आने वाले चैप्टर में मैं आपके साथ साझा करूंगा, कि क्योंकि हार्ट को हम समझे हार्ट अटैक हो गया जी, सभी लोग ये जानते हार्ट अटैक हो गई, अरे भाई हार्ट अटैक हो गया तो उसकी अलग अलग चीजें हैं, क्योंकि मैंने ये बताया कि हार्ट का सर्कुलेशन जो है वो डिवीजन में है, वो दो चीजें अलग अलग हो जाती हैं, जैसे खून उसको मिलता है ना हार्ट को, तो उसको हम बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी, और कोरोनरी आर्टरी का जो मेन पेंडर है वो आगे डिवीजन हो जाती है दो भागों में, ये इसको हम राइट कोरोनरी आर्टरी बोलते हैं, दूसरे को हम लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी बोलते हैं। अफसोस की ये बात है कि राइट कोरोनरी आर्टरी लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी से मिलती ही नहीं है, एक दूसरे का सहयोग ही नहीं करती है, अगर राइट कोरोनरी आर्टरी में कोई नुक्स हो गया तो हो गया भाई तेरा, तुम जान अब जानो, बाएं में हो गया तो उधर तुम जानो, मेरा तेरे के साथ लेने देने कुछ नहीं, कोई रिश्तेदारी नहीं है, कोई जो है ना रोटी बेटी की सांझ नहीं है तुम्हारी, यही शरीर में ऐसा चलन है, और इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि राइट हार्ट फेलियर लेफ्ट हार्ट फेलियर इसको अलग, बेसिकली ये जो दो चीजें हैं ये कोरोनरी आर्टरी के साथ संबंधित है, किस तरफ सप्लाई नहीं हुई, किस तरफ के अंग जो है वो काम नहीं कर रहे या वाल्व काम नहीं कर रहे, उसके साथ संबंधित है, और वो मैं आप सबको बताऊंगा कि अगर लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर होता है तो क्या साइन आएंगे, राइट साइड हार्ट फेलियर होगा तो हाल आएंगे इन्हीं में से, ये जो मैंने अभी सब आपको बताया ना जिसको फिर मैं बोल दूं, पेन है, प्रेशर है, टाइटनेस है, सडन स्वेलिंग हो गई है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो गई है, अनएक्सपेक्टेड फटीग हो गई है, डिजीनेस हो गई है, इररेगुलर या रैपिड पल्स हो गई है, नौजिया वगैरह होना शुरू हो गया, जी कचर वगैरह जिसको हम बोलते हैं ऐसा होना शुरू हो गया, ये सब जो चीजें हैं ये इनिशियल स्टेज में सभी के साथ ही, लेकिन कुछ तो इंडिविजुअल होगा ना भाई, कुछ तो ऐसी बात होगी ना कि हम इसको फिर लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर को बोलते हैं, राइट साइड, हालांकि ये डॉक्टरों का प्रेरोगेटिव है, डॉक्टर लोग अस्पतालों में जाते हैं और वो फिर चेक करते हैं फिर वो बोलते हैं, लेकिन ये निशानियां वो हैं जो मैंने यहां सालों को बताई कि भाई इन जनरल पैदा होंगी, इन जनरल पैदा होंगी जब आपको हार्ट में कोई प्रॉब्लम या छाती में कोई प्रॉब्लम आएगी, पहले इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे कि नहीं ये हार्ट की है ये छाती की है, फिर हार्ट की बात करेंगे तो हार्ट के हमने तीन डिवीजन बल्कि चार ही डिवीजन मैंने कर दी, और चार डिवीजन में मैंने क्या कहा, लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर, राइट साइडेड हार्ट फेलियर, कंजेनिटल हार्ट फेलियर जो बच्चों को होता है आमतौर पर बचपन से लेकर ही होता है, और वो फोरामेन ओवल की बात होती है वो हम इसको बताएंगे, और उसके बाद कई बार ऐसा होता है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, सारा खून वहां इकट्ठा हो रहा है लेकिन जाने वाला रास्ता रुक गया है, जाने वाले रास्ते में कोई रुकावट आ गई है और पूरा प्रेशर नहीं बन रहा, मतलब जिधर भी ट्रैफिक रुक गई, जिस तरफ जाने वाली ट्रैफिक में कोई रुकावट आ गई उसको हमने ट्रेस करना है, कहां हो गया, किसी ने कोई बांध तो नहीं दिया, आर्टरी जो है वो तो डीप है, अब इसके छेती बटी जल्दी से ऊपर से प्रेशर जो आप डालेंगे तो ऐसा नहीं है कि वो बंद हो जाए, क्योंकि वो डीप बनाई कुदरत ने कि इसका प्रवाह जो है रेगुलर चलता रहना चाहिए, और ऊपर से बांधेंगे तो बंद होगी ज्यादातर वेन जो खून वापस लेकर जा रही, जो खून लेकर आ रही है वो सभी नाड़ियां डीप होती हैं और ऊपर से बांधने से उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चलती रहती हैं, और इस सब चीजों का जो हवाला है वो हम अगले प्रोग्राम में आपके साथ साझा करेंगे। आज का प्रोग्राम हमारा खत्म हो रहा है, और मैं गुरदीप सिंह संधु आपका होम्योपैथी कंसल्टेंट आपकी सेवा में हाजिर हूँ, 9701 सेरा एन कोर्ट डबलिन कैलिफोर्निया 94568, फोन नंबर 408-687-1899। किसी भी वक्त तक कोई बीमारी के सामने आप परेशान हैं और लगातार ट्रीटमेंट करवा रहे हैं कुछ असर नहीं हो रहा आपको लगता तो अब सेकेंड ओपिनियन लेना चाहते हैं तो भी आप मुझे कॉल कर सकते हैं, और अगर होम्योपैथिक की साइंटिफिक अप्रोच है शरीर की, ये नहीं है कि आपको कब्ज है ये लो दवाई, आमतौर पर ट्रेंड क्या चल रहा है यही है ना कि सिर दर्द है आ लो दवाई, कब्ज है या ये लो दवाई, अलग अलग आप नाम लेंगे और डॉक्टर कह गए अच्छा जी ये लो दवाई। होम्योपैथिक सिद्धांत है इस शरीर को एक सिंगल यूनिट मानता है, इसके अंदर जो जीवन शक्ति है वो सिंगल है इसको कंट्रोल करने वाली, वो जो निकल जाती है तो आंख नाक मुंह ये सब वही रहते हैं लेकिन ये काम नहीं करते, इसका मतलब इसकी कंट्रोलिंग पावर जो है हमको तो उसको डील करना है यार, अगर सही चल रहा है तो भी उसकी वजह से चल रहा है, अगर गलत चल रहा है, अगर चीफ मिनिस्टर ही ठीक नहीं है तो बाकी नीचे का प्रोग्राम तो कैसे सही नहीं चलेगा, और अगर वहां कोई नुक्स हो गया है कमांड नहीं चल रही है तो फिर हम सीएम को ही बोलेंगे तो हम सीएम के सामने ही बात रखेंगे ना, तो इसीलिए हम लोग इस शरीर को सिर से लेकर पांव तक क्या क्या नुक्स हो गया कहां कहां नुक्स हो गया इस चीज की शिनाख्त करने के बाद ही आमतौर पर ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं कि एज ए होल निशानी क्या हुई, एज ए होल नुक्स कहां हुआ और उसका निवारण कैसे हो सकता है, ये सब है तो आना और जाना है, और आने और जाने किसी की फंक्शन में, किसी की इलेक्ट्रिसिटी में, किसी की करंट में, चलने के प्रवाह में कोई रुकावट आएगी तभी तो बीमारी आएगी ना किसी अंग में, तो यही सब हमें शनाख्त करना होगा, बड़ा आसान तरीका बहुत ज्यादा डिफिकल्ट वाला नहीं है, पर हाँ अगर आपको लगता है कि आप किसी ऐसी प्रॉब्लम में हैं जिसका हल आपको दिखाई नहीं दे रहा तो आप ये समझने के लिए भी मुझे कॉल कर सकते हैं 408-687-1899, और अगर आपको लगे कि ये प्रोग्राम से कुछ जानकारी मिल रही है कुछ अच्छा मिल रहा है तो ये बात आप दूसरे अपने रिश्तेदार बहन भाइयों को बताएं ताकि वो लोग भी इन चीजों को जान पाएं और अपनी सेहत का ख्याल रख पाएं, अपने आप को तंदुरुस्त रख पाए, और अगर बीमार भी पड़े तो एंशियस ना हो, परेशान ना हो, उनको पता हो कि भाई इसके पीछे ये कारण है, इसको हम पहले ठीक कर सकते। तो आप सबका रब रखा, आप सबकी अच्छी सेहत के लिए दुआ करता हूँ। सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार।
1: शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत मेहरबानी, थैंक यू सो मच
2: जी। थैंक यू,
1: थैंक यू, थैंक यू,
0: थैंक यू। चीमा साहब आ गए ने
1: जी, चीमा साहब नाल ही सी ताडे, बड़ी मेहरबानी जी। मिलते हैं जी परसों, फिर सुनते हो, ताडा भी धन्यवाद, इसी तरह सुन लिया करो प्रोग्राम, बड़ी मेहरबानी।
0: हार्ट की गल चलनी है, ध्यान नाल सुन लियो फिर
1: जी। सर थैंक यू जी, थैंक यू।

0: बहुत नाज है ना हिंदुस्तान को तुम्हारी सिख रेजिमेंट पर। अरे तुमने कड़े पहने तो हमने भी चूड़ियां नहीं पहनी। देख देख तेरे सीने पर पांव रखकर कश्मीर की सरजमीं पर हम हमारा झंडा लहराएंगे।
1: ओ खुशिया, तू नहीं जानता सिक्का लो केस कच कड़ा कृपान संगा सिखों का निशान। ढूंढते रह जाओगे नक्शे में पाकिस्तान।

0: y márquelo de nuevo.
1: Message 2, US01LV.
2: जी डॉक्टर साहब, चीमा साहब दा लग नहीं रहा तो आप कर दें जी चालू। थैंक यू सो मच दोस्तों, डॉक्टर गुरदीप सिंह संधू साहब जुड़ गए जी साडे नाल ते प्रोग्राम दी शुरुआत कर दें।

यमुना का बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं, अरे बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं।

0: बबी जी मेरी आवाज अज तो भाई ड्रामा ही होने लिया कोई मैं ना एक गाना ला लेना ते जिनी देर इन्हों ना आवाज नहीं ना मेरी सेटिंग हो जाती उन्नी देर फिर
1: हेलो जी
0: बबी हेलो जी हे हे कितने हेलो बबी जी सुन रहे हो मैनू बबी जी ताड़ी आवाज जिहड़ी है ना ओ मुकेश पग दोस्तों साडा ना कॉन्टेक्ट नहीं हो रहा आप
2: विच
0: ते मैं उन्नी देर गाना ला
2: और बेल आइकन को प्रेस करें
0: गाना ला बबी जी सुन रहे हो मैनू

हुनर में मेले में अकेले फिरी बाजार सर में कौन सा बनाना बहाना बहाना बहाना यमला पगला दीवाना।

सो दोस्तो, मैं गलबात कर रहा सी कि उस वक्त जेड़े लोका ने दावा किया सी कि धरती चपटी नहीं गोल है, उस वक्त दे जमाने ने उन्हां नूं सजाए मौत दित्ती। ते भारत दे विज्ञानियां दी गल सुन लो, असी टेकनीक ते पश्चिम दी है ना नकल मार के जे कुछ बना भी लईए, धार्मिकता दे पॉइंट ऑफ व्यू तो मैं गल कर रहा, जदों मंगल यान जदों भारतीय विज्ञानियां ने बनाया ते आपे बना के बना लिया, फिर नारियल भन के धूफा जगा के ओदी पूजा करन लै पे, हद हो गई। इहदे च की तुसीं जिहड़ी मशीनरी बनाई है ये कोई की है, कोई देवता बनाता है, तो हाँ कोई रब बनाता है जिहदी पूजा करन रहे हो, हाथी तां तुसीं इह सारा कुछ बनाया है। भावें टेकनीक किसी होर कंट्री दी सी, कोई गल नहीं, पर तुसीं चलो बनाया है ते इहदे च पूजण वाली इहदे नक्क कसाउण वाली किहड़ी गल है। रफेल जहाज जदों लै गए, राजनाथ सिंह हुणां ने उहदे टायरां थले नींबू रखे, नारियल तोड़े, हां जी उहदी आरती उतारी, उह जहाजां दी पूजा कीती। जिहड़े इंजीनियरां ने इह जहाज बनाए होणगे उह तुहाडे बारे की सोच रहे होणगे, कि तुहानूं कुछ होर वी याद है, चेते आउंदा कोई कोई पूजण तों सवा, चूहियां तक पूजण तों सवा, हर उह चीज जिहदी समझ ना आए उहदे अगे मत्था ही टेकी चले जाणा, नदी अगे मत्था टेक देना, दरख्त अगले अगे मत्था टेक देना, फलानी चीज नूं इट्टां दा ढेर जिथे लगा होएगा उथे जा मत्था टेक देना, ए अंधविश्वास है, धार्मिकता नहीं। वो जहाजां दी पूजा कीती गई जी, नींबू नींबू धर के, ए जहाज की गल है, तुहाडे पूजा करन नाल पेट्रोल घट खाणगे जां तुसीं इहदे ते कोई

जे सोकाए ही सड़दे ने, जे डोबाए ही मरदे ने, सब कहरिये नाते वरदे ने। जिथे मर के चांबल जाम दे हन।

कितनी प्यारी आवाज है दोस्तों, और कितनी दर्द भरी आवाज है। गल इस तरह भाई 1971 जदों पुलिस दे स्पैशल स्टाफ ने उदासी जी नूं गिरफ्तार किया ते शरीरक ते मानसिक अन्ना तशद्दुद उहदे ते कीता गया। उस वक्त नस्लवाड़ी लहर जोरां ते सी, नक्सलवाड़ी लहर। उदासी ना तां जबर अगे चुकिया ते ना ही उन्हें अपने किसे साथी दी सरगर्मी दा कोई किसे किस्म दा भी राज खोलिया, पर अन्नी ते गुजी कुटमार कारण शरीरक भज तोड़ उहदी बहुत होई सी। लोग घोला नूं जबर नाल दबाउणा, ये बंदे खाणियां सरकारां दे काम ने। वह बंदे नूं कई तरह मार दियां ने, एक पासे शरीर ते जबर दा पहाड़ा, दूजे पासे मानसिक तौर ते धमकाउणा। इसे करके इनकलाबियां दे परिवार ते बच्चियां ते भी जबर कीता जांदा है, ताकि मानसिक तसीहां अगे इनकलाबी गोडे टेक देण। पर उदासी जी जुल्म दी वाशड़ अगे अपने अकीदे तों बिल्कुल ना फिरके, वह अपनी सब तों प्यारे बच्चे घर उन्होंने उन्हां दी भी परवाह ना कीती ते ना ही मौत तों डरदे सन। मैं उन्हां दा गीत नहीं, मेरी मौत तों ना मेरी मौत ते ना रोयो, मेरी सोच नूं बचायो। ए जुल्म अते कुट ने उहदे ते उहदे गीतां विच होर भी जोश भरिया, उहदी बोली नूं लोकां ने होर नेड़े लै आंदा। उहदी बोली ने जां उहदे बोलां ने, संत राम उदासी लोकां दे नेड़े सी, असलों ही नेड़े, सच्चे अर्थां विच लोक कवि, किसानां किरतियां ते गरीबां दा मसीहा लिखदा कि तू मगदा रही वे सूरजा कमियां दे वेड़े। जिथे ओह उच्च कोटी दा कवि, लोग युद्ध दा सिपाही, वधिया सोच दा मालिक, उथे ओह वधिया पुत, भरा, पति ते बच्चियां नूं प्यार करन वाला वी, रब वर्गा प्यो जिन्हें समाजिक फर्जां नूं युरत ते दृढ़ता नाल निभाया। अक्तूबर 1986 उन्हां नूं हजूर साहिब तों इक चिट्ठी आई, जिस विच छोटे साहिबजादियां दे शहीदी गुरपुरब ते इन्हां नूं आउण दा सद्दा दित्ता गया। वापसी ते गड्डी विच उदासी जी दी भेद भरी हालत विच मौत होई गड्डी दे विच। दोस्तों उस समय पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला दे डॉक्टर बलकार सिंह उन्हां दे नाल सफर कर रहे हैं, कट्ठे बैठे हैं, एक बंदा होर सी, ये तिने एक दूजे के आपस में वाकफ सन बहुत वधिया तरीके नाल। उन्हां दी मौत बारे डॉक्टर बलकार सिंह हुणां ने कोई तसली बख्श जवाब नहीं दिता। सजणों पंजाब दे उगे कवि ते नक्सलवाड़ी योधे नूं रेलवे स्टेशन ते लावारस कह के साड़ दिता गया ते घर टैलीग्राम पहुंची इन्हां दे के संत राम उदासी फाउंड एक्सपायर्ड एट मनमट रेलवे स्टेशन। आ जरा नोट करियो, जे ओ जिस तरह मतलब कि अहे अगे पिछे दा पता ही नहीं सी, हां जी लावारस है ते एक टैलीग्राम तुसीं उन्हां दे घर किदां भेज दित्ती भाई, जे ओ लावारस है पता ही नहीं ओह कौन है कौन नहीं। जदों तुसीं टैलीग्राम भेजी है तां मतलब तुहानूं तुहाडे कोल उन्हां दा एड्रैस हैगा ते हैगा, ते फिर ओह लावारस किदां होया। ते घर वाले उन्हां दे अंतम दर्शन भी ना कर सके, हां जी किड्डा फ्रॉड ते झूठ है। भला राष्ट्रपति अवार्ड प्राप्त पंजाब दा उगा शायर, हजूमा दे दिलां ते राज करन वाला, आजादी दिवस ते जिन्हू लाल किले ते 26 जनवरी ते सद्या जांदा सी,
ਯਾਰ ਅਚਾਨਕ ਅਚਾਨਕ ਉਹ ਲਾਵਾਰਸ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਕਫ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਤੇ ਅਹੇ ਇਹ ਲਾਵਾਰਸ, ਜੇ ਲਾਵਾਰਸ ਹੈ ਤੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜੀ ਹੈ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ? ਉਹ ਤੇ ਲਾਵਾਰਸ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਡਰੈਸ ਹੈਗਾ ਤੇ ਲਾਵਾਰਸ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ? ਮੋਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਉਹਦੇ ਘਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ? ਹੁਣ ਰੱਬ ਜਾਣੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਬੇਈਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਦਾ ਪਾਇਆ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਡਾਕਟਰ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ, ਜੋ ਮੌਤ ਸਮੇਂ ਉਦਾਸੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤੇ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਦੇ ਆਏ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆਏ, ਉਹਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ, ਡਾਕਟਰ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ ਲਾਵਾਰਸ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਜਣੋ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਉਦਾਸੀ ਲਾਵਾਰਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਕੀਰਤੀਆਂ ਦਾ ਵਾਰਸ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਸੱਜਣੋ ਲਾਵਾਰਸ ਵਿਦਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਆਫਟਰਨੂਨ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਪ੍ਰਭਾਤ ਰੇਡੀਓ ਫਰੈਂਕਫਰਟ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਸਟ ਤੇ ਦੋਸਤ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸੱਜਣੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗਾ ਸਾਡੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਲਬੀਰ ਬੱਬੀ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਵੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਤੇ ਬਾ ਦਲੀਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਰਪੱਖ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾਂ ਜੀ ਕਾਲ ਕਰਨ ਤੇ ਆ ਲਓ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਮਿਰਜ਼ਾ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਆ ਲਓ ਜੀ।

की टॉ हांजी इन्हों की भी आई है नहीं ये तो 15:21 के लगभग रिक्की जी होना एक सैकंड जी ओदा टेलीफोन नंबर है मगर ला मेरा ख्याल 578 के दा है पांच हां इधर इन्हों का इन्हों में जाके वेखिए 578 ठीक है ये ने जी जसविंदर सिंह खैरा जी कोई ते आ जी 578

यमुना का बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं, अरे बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं।

सो दोस्तो गल इदां है भाई, सोचण वाली गल ए है कि हजारां साल बीत गए ने ते 80 साल सानू आजाद होया नू भी हो गए ने। ठीक है जी, साडे च कोई बदलाव या क्रांति क्यों नहीं आई, चक्कर की है? साडे तो पिछले अगे निकल गए, रौला रप्पा बहुत सुनिया पर अंत विच ओही बाबा रामदयाल ते ओही भूरी खोती, सारे खोते पार्लीमेंट च बह गए ते साडी खोती बोर्ड थले खलोती। हां जी, बदलाव नहीं आया कोई। हुण तुसी सोचते होगे कि क्यों बदलाव नहीं आया। हां जी, साडा रहण सहण बदल गया, लफजां दे मायने बदल गए ने, साडियां चलाकियां बदल गईयां ने, असीं झुग्गियां तो कोठियां ते आ गए हां, और सैकलां तो कारां ते कारां तो हवाई जहाजां तक पहुंच गए हां। हुण असीं चाची नूं आंटी कहिंदे हां। हां जी, ते चाची नूं आंटी कहिंदे हां ते पानी नूं वाटर कहिंदे हां, असीं फुफड़ नूं अंकल कहना शुरू करता, असीं तब्दीली नहीं आई है। साडी भाषा बदल गई, लकोकतियां बदल गईयां। जदों खोतियां तो मोटरसाइकलां ते ही आ गए, साडियां नजरां ते अदावां भी बदल गईयां। हर तरह दी मशीनरी आ गई, ओ कंप्यूटर युग आ गया, चारे पासे बदलाव ही बदलाव है। ठीक है प्यारे भारतीयो, ए सारे अविष्कार जेड़े तुसी गिन रहे हो, बदलाव दे जड़े ने, ए विज्ञान ते पछम दा दिता है। भारतीयो, तुहाडा तां लगभग एदे विच जीरो योगदान है, ते जीरो कार्ड भी भारत दी है, ते जां फिर भारत दे झंडे च डंडा तुहाडा। कोई अंग्रेज सी ना, उन्हें वो पुछया बाजार विच भी आ फलाना चिट्टा रंग दे, ओ जापान आलियां दा हरा रंग उन्हां दा, बसंती रंग उन्हां दा, ते झंडे च तुहाडा किहड़ा रंग है भारतीयो? ते भारतीय जिहड़ा जवाब देण लगा कहिंदा झंडे च डंडा किहदा है? साडा। हां, ते झंडे च डंडा तुहाडा। पहला तां तुसीं गुलाम सी, ठीक है जी, पिछले 80 सालां तों तुसां कोई अंतरराष्ट्रीय खोज कीती है? ए सारे अविष्कार जेड़े तुसीं गिन रहे हो, बदलाव दे जेड़े ने, ए विज्ञान ते पछम दा दिता है। भारतीयो, तुहाडा तां लगभग एदे विच जीरो योगदान है, ते जीरो कार्ड भी भारत दी है, ते जां फिर भारत दे झंडे च डंडा तुहाडा। कोई अंग्रेज सी ना, उन्हें वो पुछया बाजार विच भी आ फलाना चिट्टा रंग दे, ओ जापान आलियां दा हरा रंग उन्हां दा, बसंती रंग उन्हां दा, ते झंडे च तुहाडा किहड़ा रंग है भारतीयो? ते भारतीय जिहड़ा जवाब देण लगा कहिंदा झंडे च डंडा किहदा है? साडा। हां, ते झंडे च डंडा तुहाडा। पहला तां तुसीं गुलाम सी, ठीक है जी, पिछले 80 सालां तों तुसां कोई अंतरराष्ट्रीय खोज कीती है? सिफारशी

0: हेलो जी
1: बबी जी, मेरी आवाज अज तो भाई ड्रामा ही होने लिया कोई। मैं ना एक गाना ला देना ते जिनी देर इन्हों ना आवाज नहीं ना मेरी सेटिंग हो जाती उन्नी देर फिर।
0: हेलो जी
1: बबी हेलो जी हे हे कितने हेलो बबी जी सुन रहे हो मैनू बबी जी ताड़ी आवाज जी है ना ओ मुकेश पागलूंगा दोस्तों साडा ना कॉन्टेक्ट नहीं हो रहा
2: आप विच
1: ते मैं उन्नी देर गाना ला
2: और बेल आइकन को प्रेस करें
1: गाना ला बबी जी सुन रहे हो मैनू।

लगाती ना, छोटी सी उम्र में वो जान को लगाती ना, प्रेम का रोग पुराना पुराना पुराना, मैं कैसे यमला पगला दीवाना हो रहा।

ने, जिमें होता है थोरेसिक एबडामिन होता है या एबडामिन होता है डिसेंडिंग है, जिनी जिन्हें भी वो जा रही ने उन्होंने अलग अलग ना रखते है तो होता ही, लेकिन थोरेसिक होता थोरेसिक डिसेंडिंग होता कह दें, थोरेसिक डिसेंडिंग एबडामिन होता है इसको कह दें, अलग अलग ना असि रख दें पोजिशन के मुताबिक कितने हैगी है। तो इस तरह करके ईसोफेगस भी लंघ के जाता है, बहुत सारिया चीजा ने जिहड़ियां नर्व वगैरा ते ब्लड वैसल वगैरा इस डायाफ्राम तो लंघ के दूसरे पासे जांदियां ही जांदियां हैगियां ने। सो ओ सात तरह के डिफरेंट ओपनिंग हैगे ने, उन्हां दी गल भी आपां बाद च करांगे भी किहदे किहदे विच हो जावे ते की प्रॉब्लम ते कित्थे आवेगी, बाहरों असीं किवें पता करांगे भी भाई इह ईसोफेगस नाल संबंधित गल हैगी है, भी भाई इह हार्ट दे नाल संबंधित गल हैगी है। इह निशानियां मैं बाहरों तुहानूं दसांगा जिन्हां तों तुहानूं पता लग जाऊगा भी, क्योंकि सात ओपनम ने सात लोगों के लगने वास्ते रस्ता है, सत्तों के विचों की रस्ते प्रॉब्लम आ गई है वो असी आम तौर पर इस गल लभ लेने। उस तो बाद छाती की साड़ी गल चल रही है, तो छाती दे मासपेशियां की गल चल रही है, तो मासपेशी दे सब तो वड्डी मासपेशी असी डायफ्राम नूं गिणिया है वो गल चल रही है। उस तो बाद कुछ छाती के सामने मसल है जेडे स्टर्नम ही अपनी पोजिशन च बनते ने, जेडे पिछले पास रीढ़ की हड्डी नी पोजिशन रखते ने, उन्होंने असि कहने पेक्टोरल मसल। पेक्टोरल मसल जिड़े ने चार ने, एक सरैटस इंटीरियस है, सब स्कैपुलर है, सब सब का मतलब होंगे हेठा, स्कैपुलर का मतलब पिछले पास शोल्डर ब्लेड जरा है सा पिछले पास ओदे तो तुर के अगे आके स्टर्नम दे नाल लग्या हुंदा भाव छाती नूं मजबूत करन वास्ते, सब स्कैपुलरिस ते सराइटस इंटीरियर, इंटीरियर जिहड़े ओदा बॉर्डर हैगा आ ओदे विच लंघ गया। मतलब इह साडे वास्ते निशानियां ने, आम लोकां नूं जानण दी लोड़ नहीं हैगी भी कई चीज कित्थे हो रही, पर मैं तुहानूं सिर्फ इह दस रहा भी चार मसल ने, पेक्टोरालिस मेजर, पेक्टोरालिस माइनर, सब स्कैपुलरिस, सराइटस इंटीरियर, ये चार मसल ने जेड़े छाती का सामना हिस्सा साडा बनाउंदे ने। और मातावां भैणां बच्चियां दे जेड़े ब्रेस्ट बनदी है ओ इन्हां मासपेशियां दे विचों ही अगे अलग डिवेलप, ओदे च फैट डिपोजिशन ज्यादा हुंदी है जिस करके ओ ब्रेस्ट अगे बननी शुरू हो जाती है और ओ भी इहदा हिस्सा ही हुंदा। उस तों बाद पिछले पासे दी गल आपां करी, स्कैपुला हैगी है ते स्कैपुला दे उपरे पिछले पास मैं जो स्कैपुला की गल करी सी, मैं दस्या सीगा भी एक तिकोनी टाइप की प्रोटेक्शन हैगी है, ब्लेड है जेड़ा कि पिछले पास फेफड़िया नूं बचा के रखता है, पसलियां नूं बचा के रखता है। दूसरा ये पिछले पास जिवें ऊठ के उपर उपरले पास पिछली पिछ के उपर उभार जहा बनिया हुंदा ना ऊठ का, इस तरह करके ये उभार उपर बनिया होया जिन्हू असीं कहने आ स्कैपुलर स्पाइन, स्पाइन ऑफ स्कैपुला, स्कैपुला की स्पाइन हैगी है उपर वाले पासे बनी हुई और ओदे हेठां वाला भी मसल ते उपर वाला भी मसल, ये दो मसल जेड़े ने ए भी सानू सज्जे भी ते खब्बे भी इस चेस्ट नू प्रोटेक्ट करन वास्ते साडी सपोर्ट करदे ने। ट्रेपीजियस मसल, सुपरा स्पाइनेटस, इन्फ्रा स्पाइनेटस एंड पिछले पासे तो ट्रेपीजियस मसल, ये आउंदे ने जिहड़े शोल्डर नाल बजदे ने ते शोल्डर नूं पक्का करदे ने ते उहदे मुताबिक साडी इह चेस्ट नूं भी सपोर्ट करदे ने। हांजी खैर नावां तो तुसीं की लैणा, इह मेरा काम आ, मैं दस दित्ता तुहानूं कि आह आह मसल ने। जे मसलां दी गल करदे आ उस तों इन्हां मसल तों अलावा भी कुछ होर मसल ने जिन्हां नूं असीं कहिंदे आ इंटरकॉस्टल मसल। इंटर दा मतलब हुंदा इन बिटवीन, कॉस्टल दा मतलब हुंदा रिब्स, इंटरकॉस्टल मसल रिब्स दे विचकार, रिब्स नूं आपस विच एक दूरी ते बन्नी रखन वास्ते जेड़े मसल काम करदे ने उन्हां नूं असीं इंटरकॉस्टल मसल कहने आं। ते जिन्हां दे नाल रिब्स जिहड़ियां ने उस स्टर्नम दे नाल बजदियां ने ओ वी लिगामेंट साडे हुंदे ने, इंटरकॉस्टल उन्हां दे लिगामेंट्स हुंदे ने जिहड़े उन्हां रस्सियां जिहड़ियां ने ओहदे नाल बनदियां हैगियां ने, ओ स्पेशल टाइप दियां हुंदियां ने। तो मतलब ए तकरीबन तीन तरह दियां मासपेशियां दी गल, जदों हड्डियां दी गल होई सी, बोन्स दी गल होई सी, स्टर्नम ते रिब्स और थोरेसिक वर्टीब्रा दी गल होई सी, जदों मसल दी गल होई सी ते मासपेशियां ते पेक्टोरल मसल्स और उस तों बाद इंटरकॉस्टल मसल्स, ये असीं गिणे आ जिहड़े